0: लाए। कुछ शीशे झूठ बोलते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो, सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
2: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
3: जगदात्री,
2: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
3: माला ले आना लाइया जी।
2: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
4: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन।
2: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 बजे ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
5: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
6: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
7: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

0: है
1: लाइका रेडियो.
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज द विनर.
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
8: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
9: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

0: Leica Radio. Leica Radio. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: मॉम, आई एम आउटसाइड। यस, लिटरली जस्ट लैंडेड।
3: वेट, हाउ आर यू कॉलिंग ऑलरेडी? आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर वाईफाई।
2: ओह, आई एम ऑन सिमजी, डाउनलोडेड द ईसिम बैक एट हीथ्रो।
3: एंड यू डिडंट पे दोस मैसिव रोमिंग चार्जेस?
2: नॉट अ पेनी एक्स्ट्रा, जस्ट अ चीप लोकल डेटा प्लान। आई इवन केप्ट माय यूके नंबर फॉर बैंक अलर्ट्स।
4: हेडिंग होम फॉर द हॉलीडेज? स्किप द रोमिंग ड्रामा, गेट इंस्टेंट 5G डेटा इन इंडिया एंड 100 प्लस कंट्रीज। डाउनलोड द सिमजी ऐप टुडे। सिमजी, योर ग्लोबल फ्लो। T's and C's apply.
0: Punjab the biggest tunes.

असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख वीस लख।

0: advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
1: नमस्कार, रवि शर्मा ब्रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: What a classic. सीता गीता से आपने सुना ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में, उससे पहले फिल्म दयावंत से सपना मुखर्जी और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में चाहे मेरी जान तू ले ले।
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And this morning, gold is trading at 106.49 pounds sterling per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
0: One more classic, Sahib Bibi or Gulam. See you after.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहाँ मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
3: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
4: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
3: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
4: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
3: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
5: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
3: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
6: यूरोप और UK के सपने देख रहे हैं? तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
0: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
8: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
0: So where do we find something like that now?
8: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our elders used it.
9: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
10: Did you know that Like a Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Like a Radio mobile app. Breakfast with Kajal.
11: Like a Radio.
12: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. ये है Like a Gold.

0: ¡Excelsior!
1: Good morning. स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में श्रोताओं का, संगीत प्रेमियों का, रसिकों का, जिज्ञासुओं का। बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के जून महीने की 4 तारीख हो गई आज। एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर बहनों भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि शर्मा स्टूडियो पहुंच गया हूं। थैंक्स टू काजल, शी'ल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक अपनी बारी है, पूरी तैयारी है भाई। आज थर्सडे को कुछ खास तरह के गीतों का इंतजार होता है हमारे श्रोताओं को, जिनमें क्या होता है, दर्द होता है, वियोग होता है, शिकवे शिकायतें होती हैं। अब शिकायत किससे? भाग्य से, ऊपर वाले से, दुनिया से या दुनिया वालों से? अपनों से ही की जाती हैं शिकायतें साहब, और अपना वो जो बन गया है सपना, वो सपने वो देखता है सभी के सिवा मेरे, मैं जागता हूं जिसके तसव्वुर में रात भर, कर ले वो आफताब से यारी तो किस तरह, दीपक की लौ है मुकद्दर में रात भर, अश्कों से चांदनी ने भिगोए हैं सभी गुल, रोती है चांद के चक्कर में रात भर, फिर जख्म हो गए हैं हरे अपनी खता है, डूबा रहा हूं गम के समंदर में रात भर। तो सुबह ऐसी होनी ही थी।
2: Like a Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: कर ले वो आफताब से यारी तो किस तरह, दीपक की लो है जिसके मुकद्दर में रात भर, और सपने वो देखता है सभी के सिवा मेरे, मैं जागता हूँ जिसके तस्वुर में रात भर। उसे नींद कैसे आती है?

0: काश हमारे बस में होता कि मैं गम को खत्म कर देते। लेकिन एक बात बताऊं आपको बहन भाइयों, अगर गम दुनिया में ना होना तो फिर खुशियों का कोई महत्व नहीं होगा। आप देखिए, अगर किसी शहर में, गांव में, कस्बे में, किसी राज्य में, देश में सिर्फ छाया ही छाया हो तो छाया का कोई महत्व नहीं होगा। धूप ही बताएगी कि छाया कितनी सुखद है। और भाई धूप ही धूप हो, छाया ना हो तो धूप का महत्व नहीं होगा। ये तो भाई धूप और छांव दोनों चाहिए, सुख और दुख दोनों चाहिए, गम और खुशी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस बताते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस गम को मार डालो। चिंतन की बातें हैं, चिंतन में करेंगे 11 बजे की खबरों के बाद। लेकिन फिलहाल तो भाई ये बता दें कि ये गीत जो आप सुन रहे थे, दैट वॉज टेकन फ्रॉम फिल्म आसपास, लता जी की आवाज में था। और प्रोग्राम की शुरुआत जिस गीत से हमने की थी, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, शिकायत है ना भाई। ये शिकायत गुरदास मान व साथियों की आवाजों में हमने सुनवाई से शुरुआत हुई थी आज के मनोरंजन प्रोग्राम की। बृहस्पतिवार, जून महीने की 4 तारीख, और बहन भाइयों वक्त हमारी आपकी मुलाकात का है। आज कुछ एक दर्द भरे गीत हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें याद आती है हमारी एक बहन मिसिस शेख जो अक्सर कहती हैं थर्सडे को ना भूले, 2-4 दर्द भरे गीत जरूर शामिल करें। वैसे भाई शरारती गीत, रोमांच के गीत या रोमांटिक गीत, प्यार मोहब्बत के गीत, ये शरारतें तो सभी भाई कार्यक्रमों में मिल जाएंगे आपको। दर्द भरा कोई गीत थर्सडे के मनोरंजन में शामिल होता है, राइट। तो गीत संगीत की महफिल से निकल कर वो जरा बैंक का चक्कर लगा के आए और पाउंड का रेट पता लगाएं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज का रेट एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहे हैं 128 रुपए और 25 पैसे। नोट कीजिए, For one pound, you could get 128.25 Indian rupees maximum. और साहब इसके साथ साथ कुछ और भी है कि अगर आप इस महीने के आखिर तक 1000 pound से ज्यादा भिजवाते हैं तो भाई कुछ स्पेशल चीजें साथ जोड़ दी गई हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी into win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds aur 2000 pounds se zyada bhejte hain to bhai there is a chance to win 1 gram gold coin every week. All the best. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसा 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसाला 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
2: While stocks last,
4: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dear-seat panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rithgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods.
5: Radio partner Leica Radio.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
7: જેજ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
3: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk સખણા રેજો હસબન્ડજી
2: સિટીબોન્ડ ટ્રાવેલ પ્રાઉડલી પ્રેઝન્ટ્સ યાત્રા ટૂર્સ 2026
8: ડિસ્કવર કૈલાસ માનસરોવર ચારધામ અમરનાથ શ્રીલંકા વિથ અયોધ્યા અયોધ્યા વિથ કાશી ધ ગોલ્ડન ટેમ્પલ અમૃતસર એન્ડ મોર
2: બુક બિફોર ધ 31st ઓફ ઓક્ટોબર એન્ડ ગેટ £150 ઓફ કૈલાશ ઓર £100 ઓફ એની અધર યાત્રા ટૂર
8: ઓલસો એક્સપ્લોર 2026 ક્રુઝિસ
2: ફ્રોમ અલાસ્કા ટુ ધ કેરેબિયન ધ મેડિટરેનિયન જપાન એન્ડ કોરિયા વિઝિટ અસ એટ 5 મિલ્ટન રોડ લેસ્ટર ઓર કોલ સિટીબોન્ડ ટ્રાવેલ ઓન 01162167225 વેર એટ ઓલ પ્રોટેક્ટેડ
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757 Greens by Danube Prime Location
9: High Appreciation
10: in Dubai
11: Zara

0: track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ हॉल ट्रेवल का पैगाम आपके नाम. मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल. एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन. 40 वर्षों से भी ज्यादा का भाई सशक्त भरोसा सैलानियों के दिलों में और दे आर द विनर ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. तो भाई ऐसे साउथ हॉल ट्रेवल का संपर्क नंबर नोट कर लीजिए 0208 574-8410.

0: आया ही था ख्याल की आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद के कितना करीब थे, मुस्कुराने लगे थे मगर रो दिए। भाई ये गीत सुनकर अगर आपको नूतन जी की याद आ रही हो तो बता दूं कि आज बहुत लोग याद कर रहे हैं उन्हें। नूतन अभिनेत्री, अपने जमाने की सुपरहिट एक्ट्रेस, आज भाई उनका जन्मदिन पड़ता है। एक आध गीत और उनकी किसी फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल तो करेंसी रेट्स की ओर जाएंगे।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाइ मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: नोट कीजिए लेमफाइ के रेट्स, भाई एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.69 रुपीज, पाकिस्तानी 374.3

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के इस दौर में। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मनोरंजन ऑन लाइका गोल्ड। लाइका रेडियो नेटवर्क पर मैं रवि शर्मा भाई दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस भाग में हम आपको चिंतन सुनवाया करते हैं, थॉट फॉर द डे, यानी आज का विचार।

आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं भारत से हमारी वीना सैनी बहन जी का भेजा आलेख। लिखती हैं, संतों के मुखारविंद से, सत्संग में संतों के सानिध्य से, जो सुना जो जाना वो मैं कभी कभी आप तक पहुंचाती हूं, चिंतन में शामिल कीजिएगा। थैंक यू वीना बहन जी। कहते हैं कि एक महात्मा से देवताओं ने कहा, आपने अपनी जिंदगी में बहुत तप किया है, बहुत पूजा पाठ त्याग बैराग सब कुछ आपके जीवन में रहा है, तो आप स्वर्ग में अब प्रस्थान कीजिए, स्वर्ग में पधारिए। ऋषि ने पूछा, स्वर्ग में क्या मिलेगा? स्वर्ग में सुख, उपभोग की तमाम वस्तुएं। संत ने पूछा, स्वर्ग में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा प्रभु? हाँ, सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख नहीं चाहिए, शांति चाहिए। अब बहनों भाइयों, आप भी सोचेंगे सुख और शांति में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। शांति यानी संतुष्टि। शांति एक एहसास है, इसमें पदार्थ इन्वॉल्व नहीं है, चीजें नहीं है, साधन नहीं है, सोफे बेड गाड़ियां बिल्डिंग भवन जमीन जायदाद नहीं है, बस अनुभव है, एहसास है। देवताओं ने कहा, वो तो स्वर्ग में नहीं होता, स्वर्ग में तो सिर्फ उपभोग कर सकते हैं आप, त्याग नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, कर्म का फल भोगते हैं। ऋषि बहुत पहुंचे हुए थे, नाम था महर्षि मुद्गल। बोले, ऐसे स्थान पर हमें नहीं जाना है जहां हमारे हाथों को सेवा का अवसर ना मिले। और शांति सेवा में है, सुख में नहीं, साधनों में नहीं। और बहन भाइयों, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, बीना बहन जी भी याद दिला रही हैं, आप गुरुद्वारे में जाइए, बड़े बड़े लखपति करोड़पति लोगों को आप जूते साफ करते हुए देखेंगे। पैसे की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, सुख पर्याप्त है, लेकिन शांति चाहिए तो सेवा करनी होगी। सेवा बहुत बड़ी साधना है। महर्षि मुद्गल ने स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया, मैं तो इसी लोक में रह करके परोपकार करूंगा, क्योंकि मुझे सुख नहीं, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, सेटिस्फेक्शन। आइए उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें सुख के साधन भले ही ना दें, लेकिन शांति के लिए सेवा का अवसर दें। साधना करने के लिए इच्छा शक्ति दे, किसी के काम आने के लिए हमें प्रेरित करें।

0: हे ईश्वर न्यायकारी सर्वशक्तिमान, हमें सेवा का अवसर दे। सुख नहीं चाहिए, सुख के साधन नहीं चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। सेवा के माध्यम से, परोपकार के जरिए। और बहन भाइयों, ये आपको भी अनुभव हुआ होगा, एहसास होगा इस बात का, कभी किसी के काम आके देखिए, इस तरह से शांति कमा के देखिए। कोई साधन नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, बस मन में एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, वही है शांति, संतुष्टि। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें भारत से वीना सैनी बहन जी ने भिजवाया। और बहन भाइयों, गीत हमने आपको सुनवाया सरताज की आवाज में। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। मुझे यकीन है रोज की तरह आज का चिंतन भी हमारे श्रोताओं को पसंद आया। भाई बहुत सारे संदेश आते हैं, कभी कभी मैं सबका नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन सबको नाम जैसे मुझे जुबानी याद हो चुके हैं, चिंतन के प्रेमी। थैंक यू वेरी मच। सुषमा ईस्ट लंदन से कह रही हैं, गुड मॉर्निंग रवि जी, शुक्राना वीना जी का जिन्होंने ये विचार भिजवाया आज, थैंक यू। शोभना राय जी, थैंक यू वेरी मच। पिंकी कैसी हैं बहन जी आप, कहती है स्वस्थ नहीं हूं, चिंतन बहुत अच्छा लगा, आई एम इन हॉस्पिटल। बहन जी गेट वेल सून, जल्दी घर आकर के और फिर अब मैसेज भेजिएगा। कहती आई सेलिब्रेटेड माई 70th बर्थडे लास्ट वीक ऑन बैंक हॉलीडे। लेकिन उसके बाद से हॉस्पिटल आना पड़ा। बहन जी हम आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, जल्दी अच्छे हो जाइए। और 70 इज नथिंग, इट इज ए नंबर। और अर्जुन जी आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच। पम्मी महेंद्र पटेल, निर्मला जी, हिना जी, सुनीता शर्मा जी, विजय सटन वाले, और विजय हमारे मॉरिशस वाले भी, राजीव पटेल, रागिनी, फरीदा गुलाम अली, नीला चौधरी जी, वत्सला जी, थैंक यू वेरी मच। कहती है सेवा के लिए प्रेरणा प्रतीक है, हम उस संस्कृति से जुड़े हैं जिसमें सेवा जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हंसा बोरा, मानसी, अजय फ्रॉम एजाज फ्रॉम चेशम, एजाज भाई थैंक यू वेरी मच। देशराज बैसन साहब क्या कहें, आपकी तो बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंची हुई है, शामिल करेंगे। अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं, गुरुदेव गांजा, आप कहां सुन रहे हैं? और भाई ये संदेश आप कौन है जी, आचार्य ज्योति प्रकाश आपका प्रकाश यहां तक फैल रहा है। कहते हैं हम उन्हें जीने का अंदाज सिखा सकते हैं, हमसे पूछ के क्यों नहीं मरते ये मरने वाले। थैंक यू आचार्य जी। चिंतन समेटते हैं और मनोरंजन की ओर लौटते हैं।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: The competitive rate for £1 they are giving in Indian currency 128.25 rupees. 128 rupees 25 paise ka rate chal raha hai. Aur bhai saath mein ye bhi sun lijiye ki June ke end tak agar aap 1000 pound ya isse zyada bhejte hain तो एवरीडे 75 pounds का वाउचर जीतने का चांस है, और अगर 2000 pounds या उससे ज्यादा की राशि भिजवाते हैं तो देर इज अ चांस टू विन ए 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Yeh hai Laika Radio.
4: Laika Radio.
3: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Laika Radio.

इन्होंने प्यार किया अपनी आवाज के माध्यम से, अपने अंदाज के माध्यम से, सुरों से, गीतों से। एसपी बाला सुब्रमण्यम भाई आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। व्हाट अ ग्रेट सिंगर ही वाज, और वी विल से दैट ही इज, बिकॉज ही इज देयर, हिज वॉइस इज देयर। भाई इनकी आवाज से परिचय हुआ था फिल्म एक दूजे के लिए, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। उसके बाद सलमान खान की तो पहचान ही बन गई इनकी आवाज। और आज उनका जन्मदिन पड़ता है। जन्मदिन तो और भी कई कलाकारों का है, लेकिन वो बाली भाई लाते हैं सारी डायरी उठा करके, सारी जानकारी जुटा करके। लेकिन भाई एक गीत तो हम नूतन जी की ऊपर पिक्चराइज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनका आज बर्थडे है। और एक और महान अभिनेत्री आज दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती भाई, बीना राय। उनकी फिल्म का कोई गीत ढूंढते हैं, लेकिन बैक टू बैक संगीत को यहां समेटते हैं। लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम गा रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का गीत।

0: This is Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: प्यार करने वाले तो भाई प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती, दुआ ही निकलती है। जो बिजली चमकती है उनके महल पर, वो कर ले तसल्ली मेरा घर जलाकर। दुआ कर गमे दिल, खुदा से दुआ कर।

0: अरे सॉन्ग लता जी की आवाज में भाई, ये गीत हमने समर्पित किया स्वर्गीय बीना राय जी को, अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री। वफाओं का मजबूत दामन बिछा कर दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर। और साहब ये गीत शुरुआत में बता दे कि आज बीना राय जी की भी जयंती, उनका भी जन्मदिन पड़ता है। हमें हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर बैसन साहब ने याद दिलाया कि भाई उनकी फिल्म का कोई गीत शामिल कीजिएगा, तो साहब शामिल हो गया। और अभी नूतन जी की फिल्म का एक गीत जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वैसे आज कईयों की पुण्यतिथि भी है, जैसे कि बासु चटर्जी फिल्मी दुनिया से, उनका भी भाई जो है आप जानते हैं रिश्ता। और सुलोचना लाटकर, सुलोचना जी वो जो माँ की भूमिकाएं करती रही हैं बहुत सारी फिल्मों में, तो भाई उनकी भी आज पुण्यतिथि है। जन्मदिन मनाने वालों में एक और नाम, वो नीना गुप्ता, बड़ी दबंग अभिनेत्री है साहब। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म उन्होंने बनाई दिल्ली 6 पर, यानी जो ये अपना चांदनी चौक का इलाका है, उसमें एक नौजवान लड़की का के रहन सहन और वहाँ की जिंदगी को बहुत करीब से जी करके दिखाया उन्होंने, तो वो भी याद आ रही हैं। आज उनका भी जन्मदिन पड़ता है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और 4 जून 1936 में जन्मी थी फिल्म अभिनेत्री नूतन, तो भाई उन्हें भी हम याद कर रहे हैं। और किसका जन्मदिन है? जन्मदिन नहीं साहब, निधन हुआ पहलाज नेहलानी का, पूर्व सीबीएफसी चेयरमैन, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और जाने माने प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी साहब का निधन हो गया है। और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। भाई बहुत सारी उनकी फिल्म में जो है वो आपको याद होंगी, तो उन्हें भी हम श्रद्धा से याद कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं जिनके आज जन्मदिन या शादी की सालगिरह या फिर भाई कईयों की पुण्यतिथि भी है आज। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। अनारकली फिल्म का गीत, दुआओं का मजबूर दामन बिछा कर, नहीं वफाओं का मजबूर दामन बिछा कर दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर। ये गीत कौन सुना रहे थे आपको, कौन पहुंचा रहे थे आप तक?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Podcast update.
0: और याद दिला दें आपको भाई, हमारा नया एपिसोड जो है वो अवेलेबल है टू सी। ये होस्टेड बाय रूबी रजा, द टाइटल इज मेनोपॉज, और जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे पुराने एपिसोड्स भी वहां उपलब्ध हैं। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सो डोंट फॉरगेट टू सी
1: लाइक अ एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods.
7: Radio partner, Leica Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furniture.
10: breaks.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
11: in Dubai.
12: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
13: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
12: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
13: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
12: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
13: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
12: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
14: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स

आचार्य ज्योति जी कह रहे हैं कि मेरी नीस आई हैं, उनके नाम कोई गीत कर दीजिए। भाई उनके नाम कैसे करूं, नाम क्या है उनका? अच्छा लीसा उनका नाम है, तो ठीक है भाई, उनका स्वागत है। और जो गीत आज के कार्यक्रम में आपको अच्छा लगे ज्योति जी, उनके नाम कर दीजिए।

आगाज सुबह हम तेरे जलवों से करेंगे, शामों ने भी साथ साथ ही ढलना है उम्र भर। कांटों भरी हो राह या फूलों से सजी हो, दामन तुम्हारा थाम कर चलना है उम्र भर।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

0: जाने मेरा जिया करे किसका इंतजार है भाई। शेखर साहब आपकी भेजी तस्वीरों का इंतजार रहने लगा है अब। थैंक यू वेरी वेरी मच। कभी कभी लगता है कितनी मेहनत करते होंगे आप ये सारा तैयार करने में। आशीर्वाद साईं बाबा का दिलवाया आपने भाई आज की पिक्चर फिल इस तस्वीर के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। और बहनों भाइयों बैक टू बैक संगीत के माध्यम से दो गीत हमने आपके परोसे आपको परोसे और अब वेल लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स रेट। क्या भाव चल रहा है पाउंड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: By T and C's apply, note कीजिए State Bank of India UK आज दे रहे हैं कितने पैसे? Well, 128 रुपए और 25 पैसे for one pound. भारतीय करेंसी में भारतीय मुद्रा में 128.25 रुपीस। लेकिन इसके साथ ही भाई वो मत भूलिएगा कि जो ऑफर चल रही है जून के महीने में सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड यू कुड बी यू नो विनर ऑफ 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टीएनसी अप्लाई।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स
2: द वॉइस दैट टर्न्ड लव Heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: बड़ी सशक्त लेखनी से भाई कागज पर उतरे गई ये जज्बात ये भाव इंदीवर साहब के थे एंड ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Kalyan ji Anand ji ka sangeet. Lata ji ki awaaz. Suniye ye geet.
3: The one and only one, Ravi Sharma. On your number one radio.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds
2: what
1: windows of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and...
3: Hey, पूरी बात की हाँ भाई क्या कहना इन गीतों का और इन संवादों का। देखिए ये था फिल्म आई थिंक छलिया का गीत, कौन सी फिल्म से था ये? अब भाई पुरानी फिल्मों के बारे में इतनी पुख्ता जानकारी नहीं है जैसा कि आपने लिखा है। किसने लिखा है ये? लिखती हैं कि रवि जी वो जो गीत था ना, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, कहते जगदीप जी पर बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज हुआ है वो गीत, आपको देखना चाहिए। भाई सुषमा जी सही कह रही हैं आप, कहती हैं क्योंकि आपने तो देखा नहीं होगा क्योंकि आप तो ठहरे नए जमाने के, तो इसलिए। कितनी अच्छी और सच्ची हैं आप सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच, जरूर देखेंगे। वैसे भाई जगदीप पर पिक्चराइज कुछ और गीत भी हैं फिल्मों में, हैं तो बड़े रेयर लेकिन बहुत प्यारे और सबसे न्यारे गीत हैं। ऐसे भाई कुछ एक अभिनेताओं पर अगर आप ढूंढेंगे तो प्रेम चोपड़ा पर पिक्चराइज कोई गीत ढूंढिएगा, मिल जाएगा डेफिनेटली। ऐसे महमूद पर तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे अभिनेता जो हीरो नहीं हैं, विलेन हैं या हास्य अभिनेता हैं, साइड हीरो हैं, सहनायक हैं, भाई उन पर भी कई गीत ऐसे हैं जो आपको बहुत अलग से हट करके मिलेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच सुषमा जी, प्रतिभा जी और रमीला पटेल जी हरों से, कहते हैं रवि भाई नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छे अच्छे गीत बजा रहे हैं। और नैना आप जो गीत सुझा रही हैं ना, यकीन मानिए मैं संभाल के रख रहा हूँ, कभी ना कभी जरूर परोस दूंगा, लाइन में लगे रहते हैं ये गीत, बहुत अच्छे अच्छे गीत आप सुझाती हैं या याद दिलाती हैं। और साहब लाइका रेडियो नेटवर्क पर मनोरंजन कार्यक्रम धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, तो आपको हम एक सूचना भी देना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि द लेजेंडरी हरिहरन रिटर्न्स टू द यूके सोल इंडिया कार्यक्रम के तहत रॉयल फेस्टिवल हॉल में वो परफॉर्म करेंगे 4 जुलाई को। टिकट्स एट southbankcenter.co.uk और डोंट फॉरगेट एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर इज लाइका रेडियो नेटवर्क।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: सुनवाते हैं भाई वो टिल्डा वालों का ट्रैक तो सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले साउथहॉल ट्रैवल वालों का ये संदेश आप तक पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाइए और छुट्टियों पर जाइए कहीं, भाई हमारे यहाँ से आपको बहुत सुंदर ऐसी ऐसी डील्स मिलेंगी जिनमें फ्लाइट्स, होटल्स और एटोल प्रोटेक्शन सब शामिल हैं। 40 वर्षों से भी ज़्यादा का विश्वास हमने जगाया है सैलानियों के हृदय में, तो कॉन्टैक्ट साउथ Call travel on 0208 574 8410.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: Gold 2.
2: Did you know you can advertise on this station, Laika Radio Midlands, plus our other offerings, Laika Radio Greater London, Laika Gold Greater London, and Laika Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@laikamedia.co.uk.
3: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
4: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू भाई। क्रिकेट का मैच शुरू हो चुका है। बारिश के कारण थोड़ी सी रुकावट के बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में शुरू हो गया है। और भाई बता दें आपको स्कोर के आंकड़े, स्कोर है इस समय 24 रन एक विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की है और लॉर्ड्स के मैदान में दिस इज द सिचुएशन। 24 रन्स उन्होंने बनाए हैं, एक विकेट उनका गिर चुका है। मैच बारिश के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब शुरू हो चुका है। स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे।
5: आप सुन रहे हैं

रेसिपी, ऐसा गोरा बदन तब बनता है भाई, ऐसा गीत भी कब कब बनता है। ये ओरिजिनल है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में। इसके बाद इस गीत के कई रूप सामने आए, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है।

0: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
1: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
0: हमजा समोसास 3 for 10,
1: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
0: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
1: हीराग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
0: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 2 for 5, फाल्कन कैश एंड कैरी
1: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN,
0: while stocks last.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410,
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, catering.

प्रोग्राम लेकर के और एक बजे की खबरों के बाद वो आपका साथ निभाएंगे चार बजे तक। तो साहब अब अपने कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस संगीत के सुहाने सफर में हमारा हम सफर बनने का इरादा किया और भाई साथ निभाने का वादा किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। हालत संभाल लूं मैं दिले बेकरार की, शौकी में लूट लूं अभी कुछ पल बहार की, और ये क्या कि मुलाकात की मुद्दत गुजर गई, अरे बातें शुरू हुई थी अभी उनसे प्यार की। लेकिन साहब अब कल लौट कर आने के लिए आज जाना पड़ेगा, और जाना भी कहते हैं अकेले ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आना जाना अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ महफिल में आकर के बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी उपस्थिति का एहसास होता है, हर कोई मेरे दिल के पास होता है, लेकिन जब यहाँ से चलता हूँ तो भाई पता चलता है कि ये सफ़र अकेले ही तय करना है।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: हो आलो
3: परिवार उसके लिए चारो धाम, बाहर वो है परशुराम.
4: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
5: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
7: खुद से भी ज्यादा.
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
7: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
5: क्या ये नजदीकी बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, VT 394.
8: Like a Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: And looking at the currencies, each currency equivalent to one sterling pound. US dollars, we have the latest rates which keep fluctuating. I am trying to dig out the... there you go. We got US dollars 1.3457, Indian rupees 128.81, Pakistani rupees 374.46, Afghanis 84.15 and Kenyan shillings
8: 174.03. Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
9: Gold is currently trading at £107.60. £107.60 per gram.
8: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
10: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
11: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
12: Milte hi nazar,

0: ही नजर मिलते ही नजर मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है अफसोस है।
1: Yes, Crazy for Kishore is coming to town. And Suresh Ji is on his way.
2: हाँ तो नैनो में
3: बिंदिया है।
2: माथे पे
3: बिंदिया है।
2: तो बालों में
3: गजरा है।
2: आँखों में
3: गजरा है।
2: ओहो।

0: यस, ये सफर तो चलता रहेगा, लेकिन आगे दो दूसरा आपका फेवरेट है जो मैं जानता हूं, आपको सरप्राइज देता हूं। ये सुनिए, कौन सा है ये?
1: हाँ बताइए।
0: ये जीवन है।
1: ओह ब्यूटीफुल।
0: ये
1: पिया का घर।
0: साथ गाइए।
1: हाँ।

0: आई नो, जैसे मैं गाने के साथ गा रहा था, आप भी गा रहे होंगे. एंड दीज आर द एवरग्रीन सॉन्ग्स एंड वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन नूतन समर्थ बहल. शी वॉज बॉर्न ऑन 4th of June 1936. शी वॉज बॉर्न इन बॉम्बे एंड शी डाइड इन मुंबई. दैट्स राइट, 1936, 4th June 1936, and she passed away on 21st February in Mumbai. Today is her 90th birth anniversary. She passed away at the age of 54, and it is sad that she died of breast cancer, which was diagnosed in 1990. And then on 21st February 1991, at the age of 54, she passed away. Her father, Kumar Sen Samarth, and her mother, Shobana Samarth. Everybody knows Shobana Samarth was the one, a mother who launched her two daughters. That's Nutan. And who else? Who else? You tell me. Because Hamari Beti, ek film thi jisme baby Tanuja thi. Ji haan, choti baby Tanuja. नूतन की बहन, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों को हमारी बेटी 1950 में लॉन्च किया था. एंड ये गाना जो मैंने अभी सुनाया, दिल का भंवर करे पुकार तेरे घर के सामने, उसमें स्टोरी कुछ यूं जाती है कि गोल्डी आनंद, दैट्स विजय आनंद, यू नो, विजय आनंद की फेवरेट एक्ट्रेस वो थी नूतन जी. शी सूटेड परफेक्टली इन द कॉमेडी तेरे घर के सामने, 1963 की जो फिल्म थी. एंड दिल का भंवर करे पुकार, ब्यूटिफुली पिक्चराइज सॉन्ग. इट वॉज शॉट एट कुतुब मीनार टू गिव दैट फील ऑफ डेली. डेली की स्टोरी थी, तो टू गिव द फील ऑफ डेली दे पिक्चराइज्ड इट ऑन कुतुब मीनार. एंड इनकी जो स्टाइल थी गोल्डी आनंद की, इन्होंने दिखाया देवानंद साहब और नूतन जी, दे गो अप कुतुब मीनार, दे क्लाइंब अप इन टू कुतुब मीनार एज फ्रेंड्स, एंड वेन दे कम डाउन फ्रॉम द कुतुब मीनार दे कम बैक एज लवर्स. और एक गाना दूसरा जो काजल ने आज सुनाया था हमें, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, इट हैड कैमरा ट्रिक्स. एंड नूतन इज सीन इन अ ग्लास ऑफ विस्की उसके अंदर, एंड देव साहब देख रहे हैं उनको, एंड ही पुट सम आइस इन टू इट, और दिखा रहे हैं कि नूतन जी को ठंड लग रही है. एंड सच अ ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन ऑफ द सॉन्ग, देखने वाली चीज़ है. आपने देखा ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उसको वो देखिएगा, और जिन्होंने देख लिया उनको याद दिला रहा हूँ मैं कि कितना खूबसूरत अंदाज था गोल्डी आनंद का. एंड राज खोसला जी, हु मेड द लाइव्स ऑफ वहीदा रहमान, साधना, आशा पारेख, सिम्मी, मुमताज, इन सब की इन्होंने करियर बना दी, लाइफ बना दी बाय गिविंग देम द करेक्ट रोल्स. इन्होंने नूतन जी की भी लाइफ बना दी. कैसे? शी वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड शी वॉज ऑलरेडी एजेड, आई वुड से, यू नो, शी वॉज ऑन एट अ मैच्योर एज इन 1978. सो यू कैन इमेजिन 1936 में जन्मी हुई एंड 1978 में इनकी जो उम्र थी. She got a role in Main Tulsi Tere Aangan Ki. That was Raj Khosla's movie. And he gave the role to Nutan Ji. And she won a Filmfare Award for the Best Actress. Yes, thanks to Raj Khosla Ji for that particular role he gave her. Now, looking at Nutan Ji, a career spanning four decades. Ji haan. And log kehte hain 70 plus films, but maine gini तो तकरीबन 80 तक आता है फिल्मों का नंबर. 80 प्लस फिल्म्स, फ्रॉम अर्बन रोमांसेस टू, यू नो, सोशियो रियलिस्ट ड्रामास, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, आई वुड से. एंड कितनी नेचुरल एक्टिंग थी, अगर मेकअप के बगैर भी आ जाए तो इतनी खूबसूरत लगती थी. फिल्म बंदिनी में आप देखो, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, एंड यू जस्ट सी हर सो प्रिटी. You know, a record of 6 Filmfare Awards. एक 1960 में अवार्ड मिला था उनको मेरी जंग फिल्म का, एंड शी वॉज अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड उनको मिला था. फिर 5 अवार्ड्स एज बेस्ट एक्ट्रेस, दैट वॉज अ रिकॉर्ड इन द 41 ईयर्स दैट शी एक्टेड फ्रॉम 1950 टू 1991. शी वॉज एक्टिव फॉर 41 ईयर्स. बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ मैं तुलसी तेरे आंगन की, देन बेस्ट एक्ट्रेस फॉर फिल्म मिलन, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर फिल्म बंदिनी, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर फिल्म सुजाता, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर फिल्म सीमा 1957 की फिल्म. सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी. क्या बात, क्या बात, क्या गाने. मतलब आई कैन रीइटरेट ऑल दोज मूवीज मैंने देखी हुई है जो. एंड इनकी एक्टिंग 3 फिल्मों में तो इतनी खूबसूरत एक्टिंग थी. शी गॉट नॉमिनेटेड बट शी डिडंट गेट द अवार्ड, बट आई गेव हर द अवार्ड इन माय माइंड. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऑफ मैं तुलसी तेरे आंगन की, बिकॉज उनको बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी नॉमिनेट किया गया, बट शी वॉन इट इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी. एंड देन बेस्ट एक्ट्रेस इन सौदागर, शी वॉज नॉमिनेटेड इन 1974. एंड सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेटेड फॉर अनुराग फिल्म, दैट्स राइट. एंड जैसे मैंने कहा, केदार शर्मा डिस्कवर्ड नूतन जी. हाउ डू यू मीन डिस्कवर्ड? बिकॉज द फिल्म हमारी बेटी वॉज प्रोड्यूस्ड बाई हर मदर, यू नो, ऑफ नूतन एंड तनुजा जी. And 1950 key film, and Kedar Sharma, who was directing it, that he discovered Raj Kapoor, he discovered Madhubala, he discovered Geeta Bali, and in this film he actually made this particular film and got Nutan and Tanuja in it. So we are remembering Nutan ji today. Let's listen to her songs and enjoy this hour. मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. एंड इट इज द आई वुड से द 332nd डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स, जहां पे ये शो सुनाई दे रहा है आपको. बाली ब्रह्मभट का नमस्कार.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app and branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99.
2: हमजा समोसास 3 फॉर 10.
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
2: सुहाना मसालास 2 फॉर 150. रामदेव नमकीन 2 फॉर 149.
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
2: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
2: While stocks last.
4: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 13-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full boat cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.
5: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods.
6: Radio partner, Laika Radio.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

कितना प्यारा गाना कमाल दिखाया एसडी बर्मन जी ने और मजरू सुल्तानपुरी ने लिरिक्स लिखी, लेकिन आगे जो गाना मैं पेश करने वाला हूँ उसमें भी लिरिक्स तो मजरू सुल्तानपुरी ने लिखी लेकिन संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। ये फिल्म थी आखिरी दाव और रमा जी आपकी नज़र करता हूँ मैं ये गीत एंड वी हैव बीन डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ नूतन जी। मेरा बस चले तो मैं इतने सारे गाने सुनाऊं जैसे कि हम लोग, सीमा, अनाड़ी, सुजाता, छलिया का तो मैंने सुनाया, बंदिनी का भी सुनाया, सरस्वती चंद्र का नेक्स्ट आवर में, बिकॉज अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपन्स टू बी इंदिवर जी जिन्होंने गाना लिखा था। तो सुनते रहिएगा और लुत्फ उठाते रहिएगा।

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: मैंने 10 जनवरी 2026 मैंने फोन किया मुंबई और मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू गाया पहलाज नेहलानी को. पहलाज नेहलानी द ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ बॉलीवुड एंड आई विश्ड हिम हैप्पी 76th बर्थडे. इन्होंने काफ़ी दोस्ती निभाई थी हमारे साथ. लास्ट टाइम हम मिले थे तब गणपति पूजन में हम दोनों ने साथ में जाके पूजा की थी. फर्स्ट फिल्म इनकी हथकड़ी थी 1982 की. सेकंड फिल्म थी आंधी तूफान 1985. थर्ड फिल्म थी इल्जाम 1986 की. दैट वाज द डेब्यू ऑफ गोविंदा. गोविंदा की पहली फिल्म. इन्होंने गोविंदा को हीरो बना दिया और उसकी लाइफ बन गई. इनकी लाइफ गोविंदा जी की लाइफ बनाने वाला इंसान पहलाज नेहलानी. फिर उसके बाद 1987 में आग ही आग एक फिल्म थी जिसमें चंकी पांडे को इंट्रोड्यूस किया एंड उसकी लाइफ बना दी. जी हाँ, अनन्या पांडे के फादर हमारे टाइम के चंकी पांडे, उनकी लाइफ बना दी पहलाज नेहलानी. And on 4th June, today, 2026, my friend passed away. Pehlaj Nehlani. Unki atma ko sadgati prapt ho. Ab main aapko ek gana sunana chahta hoon. And this goes all the way to nowhere else, but it goes to Morocco. Ji haan, Morocco ja raha hai ye gana. नेक्स्ट गाना है फिल्म दोस्ती का. और क्यों मैं ये गाना पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि हमारी सरिता सबरवाल जी वहाँ पे ब्रिज जी के साथ है, राज जी के साथ है, रमेश जी के साथ है, एंड दे आर विद अ वंडरफुल टूर गाइड हुज नेम इज यूसुफ. दैट्स इन अगाडेर in Morocco. Yes, sunny Morocco, and they are having nothing but fun out there. And we thought we'll say hi Yusuf, thanks for looking after Bridge, Raj, Ramesh and Sarita Sabarwalji in Morocco, in Agadir. And this song for you, for Yusuf, from Leica Gold. This is for Yusuf in Agadir, Morocco, from Leica Gold.

0: एक बार एक।
1: हाँ जी, एक बार एक बार मेरा नाम तो कह दो। कह रही है मधु जी फ्रॉम कैंटन। कैंटन वाले मधु जी, आपने गरबा किया जब मैंने वो नूतन जी वाला गाना मैंने सुनाया सरस्वती चंद्र का, मैं तो भूल चली बाबुल का देश। अरे वीडियो ले लेना था, मजा आ जाता। ये गाना भी मधु जी की नजर।
2: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
5: Hello. Hello.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: लेस्टर मेला इज बैक विद एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ऑगस्ट 15th एंड 16th एट एबी पार्क लेस्टर.
3: व्हेन इट कम्स टू हार्ट अटैक्स यू माइट बी सरप्राइज्ड टू हियर द सिम्पटम्स डोंट ऑलवेज फील सिवियर. यू कैन एक्सपीरियंस अ स्क्वीजिंग अक्रॉस द चेस्ट, अ फीलिंग ऑफ अनईज, अ सेंस समथिंग्स नॉट क्वाइट राइट. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
2: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
4: Hello friends, main hu Sarita Sabharwal. Every weekend 4 till 7 bahut si meethi meethi baatein aapke sath share karti hu. Saturday and Sunday mere sath hi rahenge.
2: This is Leica Gold across Greater London.
5: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला, ओ लैला लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।

0: चाहे जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
1: And that was music of Ravi. And lyrics by Majru Sultanpuri. Next two songs, it'll be Shankar Jayakishan. Pehla gana, Shailendra ki lyrics.
2: The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
1: जी हाँ, ये म्यूजिक बज रहा है, पधार रहे हैं सैंडी शाह. सैंडी शाह विद ड्राइव टाइम ऑन लाइका गोल्ड. राजपदन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया हो. बाली ब्रह्मट का नमस्कार और आगे बढ़ते हैं. ये गाना है शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म अनाड़ी का. लिरिक्स लिखी है शैलेंद्र ने. अगला गाना होगा असली नकली का, जहां पे शंकर जयकिशन का संगीत है और लिरिक्स बाय हसरत जयपुरी. एंजॉय.

0: जाओ।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June।
3: टेस्टी स्वैग एंड स्वीट चार्म, एवरी स्पून फील्स लाइक अ ट्रॉपिकल वार्म। मेक पूरी एंड आमरस और मिल्क शेक फुल, टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल।
4: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड, यू आर आल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोस।
3: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ।
5: Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
6: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
5: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
6: Or sales at leicamedia.co.uk.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
5: खुद से भी ज्यादा।
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
5: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
3: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Throwback Weekend, soon on Laika Radio.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट पे किया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल, मिलिए अनुपमा से।
2: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
3: Presented by Southall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
4: Hi, this is Akshay Kumar. And you're listening to Laika Radio.
5: Pay close attention and name the film of this cracker classic. Lucky.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
1: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
2: Abira, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath?
3: Jaan tum.
2: Ye faisla mera tha. Bhukat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu, kuch nahi kar pa raha hu.
3: अगर हम साथ हैं
2: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
4: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
5: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
6: यू नो हाउ फैंस शाउट एट फुटबॉल मैचेस?
7: वेक अप.
6: दैट्स बिकॉज़ साउंड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेल द प्लेयर्स दे आर रबिश. वर्क्स इन एडवर्टाइजिंग टू. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. New hits on Like a Radio.

0: आप भी जिंदगी का मजा लीजिए. यू नो आई ऑनेस्टली बिलीव द ओनली पर्सन हु कैन मेक योर जिंदगी मस्ती और मजा अपार्ट फ्रॉम रेडियो वाली ऑफ कोर्स इज योरसेल्फ. आप हमारे ज्ञान के पाठशाला में हाजिर हुए, आपका सोएक्सिस स्वागत हो. We'll just squeeze in one last big track because look at the time, ladies and gents. So you know I'm going to end this one with one of my favorite numbers of the 90s. If you know, you know.
1: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
0: Milte hai news ke baad.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Quality listening with Radio Wally. Leica Radio. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
8: 10 days to go. Arif Aslam is coming to the O2 on the 14th of June. Only 10 days to go for a night full of hits, emotion and magic. Tickets at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
9: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 01163325100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
2: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: देने दीवार। है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June। Like a Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
3: Hey, boy!
4: Coast Guard, we're stuck.
5: Okay, help's on its way.
4: Hold on, mate.
2: Shoes, tied, phone.
4: Back before dark, love. Okay.
6: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
7: Listen back to your favourite shows by logging on to likearadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
8: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
7: बॉलीवुड रोमांटिक हिट्स थ्रू आउट द नाइट। दिस इज द लव साउंड।

0: ये है Laika Radio, the voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
0: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
0: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
7: खुद से भी ज्यादा।
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
7: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
5: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, VT 394।
8: ब्रांड्स दैट यूज Radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
9: Bollywood romantic hits throughout the night. This